0: అలసిన మనసుకు సాంత్వన చేకూర్చే మాటలు పాటల మేళవింపుతో ప్రతిరోజు రాత్రి 10 గంటలకు వీణుల విందు ఈ మధురిమ.
1: సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. సమాచార ప్రభాత్, హిందీలో వార్తలు.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మై ముఖేష్ కుమార్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की. कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू. दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ. हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए. भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह. और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं. विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं. इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है. प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है. उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा

0: के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि

0: मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टनचावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान

0: अनुसार मोदी का आह्वान साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रूपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 7:15. జనరంజని శ్రోతలు లేఖల ద్వారా, మెయిల్స్ ద్వారా కోరిన పాటలు వింటారు.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आज जरीन दारूवाला यानी जरीन शर्मा का दिवस है, इन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जरीन दारूवाला का जन्म हुआ था। आज के दिन इनका नाम इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ये सरोद जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान वाद्य पर महारत हासिल करने वाली शुरुआती महिला कलाकारों में से एक है। यह बहुत सुंदर सरोद वादन किया करती थी। इन्होंने मैहर और ग्वालियर घराने से तालीम ली। वादन में गायकी, अंग और द्रुत तंत्रकारी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सिनेमा में अगर इनके योगदान को याद किया जाए तो मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ पाकीज़ा सहित कई सारी फिल्मों में पार्श्व संगीत में सरोद वादन का कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ही ये अपने पति सितार वादक पंडित अशोक शर्मा जी के साथ में देश विदेश में कई सारी प्रस्तुतियां भी इन्होंने दी। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित रही हैं। याद करते हैं उन्हें और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत बर्फी फिल्म से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और प्रीतम ने संगीत दिया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से क्या फायदा, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना वह तोहफा है जो बिना खर्च किए दिया जा सकता है और पाने वाले की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर हमारे पास दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक चीज बचती है, वह है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और आधी सफलता तो यही मिल जाएगी।

हम सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से यह गीत मोहित चौहान एआर रहमान की आवाजों में। इशात कामिल ने इसे बोल दिए और एआर रहमान के संगीत के साथ सुना हमने यह गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हम सुनते हैं नए गीतों को और उसके साथ याद करते हैं कुछ विशेष लोगों को। आज का दिन एक बार और विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास का। ये उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। उन्हें उड़ीसा का रत्न यानी उत्कल मणि कहा जाता है। इन्होंने 1909 में साखी गोपाल में गुरुकुल शैली की प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहां पर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी जाती थी। 1919 में उन्होंने द समाज समाचार पत्र की शुरुआत की, जो जन जागरण का प्रमुख माध्यम बना और आज भी उड़ीसा का प्रतिष्ठित दैनिक है। इसके साथ ही वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल भी गए थे। बाढ़, सूखे, महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। वे लाला लाजपत राय की संस्था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद जैसी प्रमुख कृतियां भी लिखी। उनका पूरा जीवन त्याग, लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा और 50 वर्ष की आयु में 1928 में आपका निधन हो गया। हम आपके जन्मदिवस पर आपको हमारी स्वतंत्रता के लिए, आपके किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंघम से, सुखविंदर सिंह की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, अजय अतुल ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है चित्रलोक. आइए चलते हैं चित्रलोक के अंतिम गीत की तरफ. ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और नृत्य से अच्छा व्यायाम क्या हो सकता है. तो मन करे तो सुनिए ये गीत और साथ में ताल से ताल मिला लीजिए.

हम सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का यगी, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नेताली की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी ने इसे संगीतबद्ध किया। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चित्रलोक कार्यक्रम में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

0: काशियां।
1: रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार।

अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 12 గంటలకు వస్తుంది వార్తలు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలత. पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है. अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर

0: भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मदुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मदुरांतकम और धारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रे कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा!

हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है। आपकी माँ को क्या पसंद है,

0: और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहां अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातवी से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग, माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है लेकिन सब तो गुजर गया।
0: जी
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम पीछा बनाता था,
0: जी
1: सब्जी बनाता था,
0: जी
1: ये सब भी मेरे माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरीका तरीका खाना बनाने सीखे और
0: अच्छा
1: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
0: जी,
1: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था,
0: जी
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा और एक बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है।
0: जी
1: आज जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरे एक वो कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए
0: हाँ
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो सही बात
1: मेरा
0: है।
1: बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा
0: जी
1: तो माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसकी यादें तो दिल से कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई, लेकिन
0: जी
1: बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब
0: जी
1: वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कह दूं कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना
0: बत...
1: अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है। इसलिए
0: क्या बात है
1: मैं
0: जी,
1: दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना, तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने। बिजनेस
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: दिल
0: जी
1: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या

0: है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे।
0: जी
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल। तो
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो
0: जी
1: सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: ये क्या बात है। और सोनिका जी ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम,
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे,
0: जी
1: उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम से, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं, और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात।
1: काम करती हूँ मैडम,
0: जी
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ,
0: क्या
1: और उसमें
0: बात।
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती हैं। और सोनिका
1: जी
0: जी
1: मैडम
0: आपको
1: जी,
0: कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, ये यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो अमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत

0: में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात
1: मन
0: है।
1: चाहे गीत,
0: अच्छा,
1: और
0: तो
1: सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ समय।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है, कपड़ों
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी, यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी,
0: बात।
1: हाँ।

0: हाँ जी, वीर भारती के
1: जी
0: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
1: एक
0: मुझे, इतना पसंद है तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
1: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
0: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
1: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
0: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
1: बीए और बीएड भी कर रखा है।
0: जी।
1: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
0: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
1: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
0: जी बिल्कुल।
1: है ना। बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की फजा।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें एक भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ ऐसा?
1: हाँ कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े
1: लगाती
0: होते
1: हूँ।
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप

0: नग वगैरह
1: हाँ,
0: लगाती हैं
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम, कमीज
0: जी जी
1: होती है ना जो तो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं निशान लगा के। तो
0: क्या बात है। तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: जैसे मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
0: जी
1: 800 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा, खीर यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: कान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप आइए, खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? अपनी पसंद बताइए।
1: मैं क्रांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं,
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही इसलिए बंद किया है?
1: जी मैडम,
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मनचाय गीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: तभी सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी
1: तो अपना काम तो हो जाता है, तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके। जी
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताजा करना चाहते हैं, माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत खेल कूदना ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे लगा, जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: खो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप चुप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ दीदी,
0: बनेगा। और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी जी, हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बस
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यहाँ तक कि मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे।
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना?
1: हाँ,
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो वाला गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी। मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है
0: अच्छा, और अपने बारे में और
1: जी।
0: कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, तो
0: जी
1: उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है,
0: जी
1: फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं
0: जी
1: और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप
0: जी
1: मंजरी जी बात कर रही हो ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, दे अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे,
0: जी
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
0: क्या बात है, फिर देखिए।

0: जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहां की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना।
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है। दीदी हम लोगों को यहाँ पे, वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे, हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी।
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के
1: दीदी
0: खाते हैं, छोटे वाले बेर होते ना, लाल लाल।
1: हाँ, वो उबाल के वो दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाओ तो दीदी इतना अच्छा लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी, बेटी के ऊपर से। बिटिया
0: सुनाइए।
1: को अगर बच्चे होने तो बहू कहते ना हो, नारी नर की खान कहावे बिटिया।

0: बन गए हो। यहाँ पे बीबिया से गाना गाई जाती है लोगों जी।
1: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
0: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
0: जी
1: बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
0: दीदी, सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली।
1: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है

22 वो नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867 0288, यानी 2867 0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हा, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी, चाची जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स

मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थीं, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सरपीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों नहीं पोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहाँ पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है।

उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था। अनगिनत खरोंचे लगी थीं। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे। बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही, इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था, बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या

या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है

वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगु करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो

दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराये शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई, खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थी। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थी। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, पार्वती।

0: और बचत के 10% लेन देन को डिजिटल बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रियासती वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने वाजे किया कि हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी और तकनीकी इख्तिरात के मरकज के तौर पर तरक्की देते हुए एक आलमी सतह के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सेंटर में तब्दील करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। बीआरएस कायद हरीश राव ने कहा कि रियासत में 33 अजला कायम करके उन्हें तरक्की के मराकज में तब्दील करने का सहरा साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। और हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि हैदराबाद शहर में नाजायज कब्जों का शिकार आबी जखार का तहफ़ हाइड्रा के बुनियादी मकसद, उन्होंने आबी जखार और माहौल के तहफ़ के लिए हर फर्ज से अपना किरदार अदा करने की अपील की। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन टिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट

सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तनकारी क्षमता रखता है, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, सैर कर रहे हो या बस शांति के आपके पल का आनंद ले रहे हो, यह जानने के लिए एक यात्रा शुरू करें कि तनाव को प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस कैसे गेम चेंजर हो सकती है। फ्रेंड्स, इन दिनों जीवन वास्तव में एक अराजक भवंडर जैसा महसूस हो सकता है ना? आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ अक्सर तनाव के साथ साथ आती है, जो रोजमर्रा की परेशानियों में हमारा निरंतर साथी है। लेकिन यह आशा की कारण है, माइंडफुलनेस दर्ज करें, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण जो आपके अनुभव को बदलने का क्षमता रखता है। ऐसा एक शांत, अधिक केंद्रित अस्तित्व के लिए अपने टिकट के रूप में कल्पना करें। दोस्तों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ये क्या है। खैर, माइंडफुलनेस का मतलब है पल में मौजूद रहना, टू लिव इन द मोमेंट। अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना, ये तनाव और चिंता के चुंगुल से मुक्त होकर वर्तमान को अपनाने का एक सचेत प्रयास है। ये प्रथा प्राचीन परंपराओं में निहित है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसने हमारा तेज गति वाले जीवन के लिए एक औषधि के रूप में अपनी जगह बना ली। जैसे कि हम माइंडफुलनेस के जादू को उजागर कर रहे हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये तनाव को कम करने में कैसे अद्भुत काम करता है। हमारे विचारों के बारे में गैर निर्णयात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करके माइंडफुलनेस हमें तनावों का निरीक्षण करने और उसमें अलग होने की अनुमति देती है। ये एक मानसिक स्थान को बनाने जैसी, जो हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है और जोनिंग आउट के बारे में नहीं है। ये आपके अनुभवों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ ट्यून करने के बारे में है। पहला सवाल आता है कि माइंडफुलनेस है क्या? क्या है? कोई मेडिटेशन है जिसमें बैठकर कई मिनट या घंटे तक ध्यान लगाना? आपको बता दें कि माइंडफुलनेस ध्यान का एक छोटा रूप है, इतना छोटा कि आपको इसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होता है। बस ये 5 मिनट अपने लिए रोज निकालें और ऐसे समय पर निकालें जब आप शांत मन यानी पीसफुल माइंड से सिर्फ अपने साथ बैठ सके। ये समय सोने से ठीक पहले, बिफोर बेड टाइम, या फिर सुबह जागने के तुरंत बाद का समय भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर इन समय पर व्यक्ति का मन शांत होता है और वो किसी हड़बड़ाहट नॉट इन अ हरी में होता है। यदि आपके साथ ये समय संभव नहीं होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं। आप शांत होकर पालती लगाकर यानी सुखासन में बैठ जाए, आंखें धीरे धीरे से बंद करें, मन शांत करें। इसके लिए गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। बैठने के समय अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। सांस भरते समय पेट फुलाए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर खींच लें। इस दौरान खुद को शांत रखें और कोई हड़बड़ी न करें। अपने आसपास की हवा, ऊर्जा, आवाज सभी को अनुभव करें। मतलब खुद को शांत रखते हुए इस बात पर ध्यान देना है कि आपके चारों

और क्या घट रहा है। जो घट रहा है उसे सिर्फ अनुभव करना है, उसके बारे में अपना कोई विचार नहीं बनाना है, ना ही इन आवाजों से कोई जुड़ाव महसूस करना है। फिर चाहे वो बच्चे के रोने की आवाज हो या हंसने की या चिड़िया के चहकाने की, इन आवाजों को सिर्फ सुनना है। खुद को इनसे अलग रखते हुए आपका ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद आप चाहे तो अगले 1 मिनट अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए रखें। ध्यान दें, आपको अपनी किसी आदत को सुधारने ही, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, दूसरों को कोई दुख न हो और आपका भी कोई नुकसान न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करें। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों शांत होते हैं। खास तौर पर जब आप इस एक्सरसाइज को सुबह के समय करते हैं तो पूरा दिन बहुत शांत और आरामदायक बीतता है। आपको अपने निर्णय लेने में आसानी होती है। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को ऑफिस में थोड़ा समय निकालकर कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपने अंदर के नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करना है। माइंडफुलनेस की नियमता प्रैक्टिस से मन शांत होता है, गुस्से पर नियंत्रण रहता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊर्जा का विकास होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप अधिक खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो ये है कि माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है और कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, माइंडफुलनेस ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाएं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ये एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हम जिस लम्हा जहां होते हैं अपना पूरा ध्यान वही लगाना होता है और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना और जीना है। माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके जरिए हम मौजूद लम्हे में जुड़ सकते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाती है कि इस लम्हे ऐसा होता है तो क्या होता है, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा नहीं हुआ आदि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती है। हमें मान लेना चाहिए कि हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना सकते हैं, अपने रिएक्शन या प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इसे धीरे धीरे हम स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं दोस्तों। तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी होना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी कम होना, गुस्सा कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता में इजाफा, नींद का बेहतर होना। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप जिस वक्त जहां हो पूरी तरह वही ध्यान लगाना होता है। इसके लिए कमर सीधा रखकर कुर्सी पर बैठे या फिर आराम से नीचे बैठ सकते हैं। आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, अपना ध्यान सांस पर लगाए, अपने अंदर आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, सहज रूप से महसूस करें, सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें, एक हाथ पेट पर रखें और गौर करें कि जब सांस ले तो पेट बाहर की तरफ जाए और जब सांस छोड़ते तो पेट अंदर की तरफ जाए। ये भी गौर कर सकते हैं कि सांस ठंडी या गर्म है। जब भी ध्यान सांस से हटकर इधर उधर जाए, घबराए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल है और एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन भटकावा के बाद फिर से अपने मन को सांस पर केंद्रित करना है। आप सांस के प्रति सजग रहे और जब भी मन भटके उसे लौटकर फिर से सांस पर लेकर आए। ऐसा करते हुए सांस सामान्यता तरीका से ही ले, सांस गहरी न ले। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस को इस क्रमिक विकास के रूप में सोचे, न कि अंतिम रेखा तक पहुंचने की दौड़ के रूप में। ये इसे आपके जीवन में धीरे धीरे इस तरह से बुनने के बारे में है जो आपके लिए बिल्कुल सही लगता है। इसीलिए इसे एक बड़ा उत्पादन बनाने के बारे में तनाव न ले।
इसे करने दें। सचेतता को अपने जीवन

0: सहजता से प्रवेश देने के लिए तैयार रहें, इसे सरल और तनाव मुक्त रखें। प्रिय श्रोताओं, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सचेतनता का आजीवन यात्रा है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रता और लचीले आत्मा के करीब लाता है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रित और लचीले आत्म के करीब लाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वयं वर्तमान क्षणों में व्यस्त रहे और जब तक हम दोबारा न मिले, आपके दिन सचेतन अनुभवों और आंतरिक शांति से भरे रहे। अलविदा और अच्छा ख्याल रखना। नमस्कार, आपका चेतन।
1: మీరింతవరకు లంహే ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.
2: నాటి మేటి సినీ గీత మాలిక మధురిమ అజరామరం అనిపించే గీతాలు

0: उन्होंने बताया कि दिल्ली में 7 बड़े रेलवे स्टेशन हैं और वहां मजमुई तौर पर जीआरपी के 334 एहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 120 खातून एहलकार भी शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहुंचने वाली सभी एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को उनके निकलने के मुकाम से ही मनसूख कर दिया गया है। ये वो ट्रेनें हैं जिन्हें आज दोपहर 2 बजे के बाद से रवाना होना था और कल नई दिल्ली पहुंचना था। रेलवे की वजारत ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के अतराफ कल सड़कों पर ट्रैफिक की मुमकिन संगीन सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो कल 10 अक्टूबर को कौमी राजधानी में होने वाले सीजेपी एहतजाज के मद्देनजर इस बात को यकीनी बनाएं कि दिल्ली मेट्रो और रेलवे खिदमात पूरी तरह से मुअत्तल न रहें। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि अवामी निजाम ट्रांसपोर्ट मुकर्रर निजाम के मुताबिक काम करते रहना चाहिए ताकि मुसाफिरों को कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए दी गई यकीन दहानी को भी नोट किया कि इंतजामिया इन पाबंदियों पर नजरसानी करेगी। बेंच ने मुतनासिब नजरिया अपनाने पर जोर देते हुए यह मुशाहिदा किया कि मुकम्मल पाबंदी और अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए खिदमात को मुनज्जम करना अलग अलग बातें हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के अजम के जरिए लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आ रही है। आज की अपनी खसूसी सीरीज में इस बात का तस्करा किया जा रहा है कि किस तरह सेमीकंडक्टर मिशन जैसे इकदाम के जरिए इस विजन को हकीकी शक्ल दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सेमीकंडक्टर जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियादी इकाइयां और मुआशी ताकत की बुनियाद हैं। मसनूई जहानत, टेली मवासलात, बरकी नकल व हमल, दिफा और जदीद सनतों में इनका अहम रोल है। पिछले 2 बरस में आलमी सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मुल्क की 6 रियासतों में 12 सेमीकंडक्टर्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1,64,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमाई के वादे किए गए हैं। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर शोबे के लिए एक पुरकशिश मकाम बनने के लिए तमाम इकदाम कर रहा है।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बात करते हुए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर परसुन शर्मा ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर का सफर अब महज ख्वाहिश और उम्मीद की कहानी नहीं रहा, बल्कि अमली इकदाम की जानिब बढ़ रहा है। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सऊदी अरब के रियाज में किंग खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर कल हुए हमले में 3 सऊदी शहरियों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। शहरी आबादी से मुतालिक सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी GACA ने यह इत्तला दी है। इन हमलों में हवाई अड्डे की इमारत और सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को निशाना बनाया गया, जिसके सबब माली नुकसान भी हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज इस बात पर जोर दिया है कि अमरीका की जानिब से मुस्तकिल मुलाजिमत की तस्दीक के प्रोग्राम PERM के सिलसिले में ऐलान करदा इकदाम दोनों ममालिक के मुश्तरक मकासद को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं हैं। आज से पहले नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बासलाहियत अफराद की आमदरफ्त से भारत और अमरीका दोनों की मईशतों को फायदा पहुंचता है। उन्होंने वाजे किया कि इससे जहां भारतीय शहरियों के लिए मौके पैदा होते हैं, वहीं अमरीकी कंपनियों को भी जदीद तरीन सलाहियतों के हामिल माहिरीन तक रसाई हासिल होती है। इसके नतीजे में जिद्दत तराजी, तहकीक, पैदावारी सलाहियत, मुसाबिकत और रोजगार के मौके में भी इजाफा होता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इससे अमरीका में कंपनियों के शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफे के साथ साथ दोनों ममालिक को बाहमी तौर पर काफी फायदा पहुंचता है। जनाब रणधीर जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से बाज कंपनियों को PERM प्रोग्राम से मुअत्तल किए जाने के कदम से बजाते खुद पहले से जारी H1B वीजों की कानूनी हैसियत या वीजा रखने वालों और इनके

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी।

0: हरकतें हम लोग जो गाते हैं दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुईं। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

0: बरत जाए।
1: रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और

0: कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण।
1: रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविन्द्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविन्द्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविन्द्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब